नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा दुबरे शिवा ठे आलमी तो या प्राणी पिखा तनी हो ना ला ली जो मा जा भी जैसे मुमा